0: खेल समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान सब जानकारी को लागि
0: खेल समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 98146 96 26।

0: खेल सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान सब जानकारीको लागि
0: खेल सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 9841 96 47 26